नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: help me.
1: काश
0: प्लीज हेल्प मी.
1: तू मेरी आँखें भर दे.
2: ऐसे कैसे गायब हो गए?
3: पता नहीं सर.
2: रिकॉर्डिंग्स लाइंड अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं. कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों.
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ.

0: कोई है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कोई है?
1: कभी खुद आई ना देखे तो चेहरे में दिखे कोई, मेरी तस्वीर बनती हो तो नक्शे में दिखे कोई, ये उजियारे में हो तो ठीक लेकिन क्या हो तब जब हो घना अंधेर।